0: Chief Minister Mamata Banerjee herself, even as she was away for Delhi for a meeting with Congress Chief Sonia Gandhi. Investigators also visited the home of Abhishek Banerjee, who has now skipped 3 CID summons in a row. Despite the raid at Mamata Banerjee's Kalighat residence, investigators left with nothing, issuing a written note confirming no seizures. The TMC has erupted, questioning the timing of the raid that took place on the same day as Mamata Banerjee's Delhi meeting with Sonia Gandhi, calling Chief Minister Shivendu Adhikari's actions as vindictive.
1: हम लोग कंडेम कर रहे हैं, हम सब लॉ अबेडिंग सिटीजन हैं, लेकिन ये घर ममता बनर्जी का घर, 3 times का चीफ मिनिस्टर, 7 times का एमपी, ममता बनर्जी जैसी लीडर, उन वो ममता दीदी का जो अभी दिल्ली में प्रोग्राम है, ये तो सबका मालूम है, दिल्ली में प्रोग्राम है, ये इंडिया ब्लॉक का मीटिंग है, दूसरा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, तो ममता बनर्जी जब नहीं है उनके एबसेंस में ये क्या हो रहा है. मेरा तो एक काम था, मैं जब आया ये सब देखा हूं तो अंदर से हमको बुलाया, लेकिन सीआईडी नहीं अलाउ कर रहा है. लेकिन इतना दिन तक ममता बनर्जी थे तो वो लोग नहीं आया.
2: इट ओनली शोज दैट नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड. ममता बनर्जी एंड आवर एक्स चीफ मिनिस्टर थॉट एंड टॉलरेटेड क्रिमिनलिज्म, करप्शन, व्हाट नॉट लास्ट 15 years. शी नेवर केयर्ड for the constitution. She thought West Bengal is another country and she is the prime minister of that country. So today CID is at her place. Everybody will be brought to books and be, you know, public will be given justice.
0: On that note, we begin to a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: cuando está de ser.
1: Llevo, llevo, dejo.
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस सो आई रिवाइंड आई पॉज आई रिफ्लेक्ट आई डिग अंटिल व्हाट्स बेरिड स्टैंड्स अप टू बी काउंटेड. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: Welcome back. This is Reef Kaur Sahani, and you're watching EDTV. Well, there's some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Well, Congress leader has now questioned the India bloc unity. That's right. Prithviraj Chavan has admitted shortcomings in the India alliance. He said, and I quote, that Congress alone could not play the opposition role. And has even gone on to add that the India alliance should have been better held together. An important update coming in at this hour as we are understanding that a Congress leader has himself criticised the India bloc. Let's also listen in to what he had to say.
1: इंडिया गठबंधन को संवारना चाहिए था, संभालना चाहिए था, लेकिन उसमें कई कमी रह गई और डीएमके टूट के अलग हो गया. उधर जो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में किया था 50 करोड़ देकर, वही ऑपरेशन कलकत्ता में हुआ है, 20 सांसदों को तोड़ दिया गया है. तो भाजपा की कोशिश है कि अगर हम चुनाव ऑनेस्टी से नहीं जीत सकते तो SIR कराइए, वोटरों के नाम काटिए, डुप्लीकेट फर्जी वोटर को लगाइए और चुनाव किसी तरह जीती है. देखिए लोकसभा में महाराष्ट्र में क्या होता है.

0: praise coming in from the allies as well. Nitish Kumar, in a strongly worded article that has been published today, describes Narendra Modi's political journey as an affirmation of the strength of our democracy. In fact, he argues that Modi's rise from humble beginnings to becoming one of India's longest-serving prime ministers actually reflects aspirations of millions of people who can basically take inspiration and overcome barriers of birth and circumstance. Aishwarya Jain is with us now. Aishwarya, how politically significant is this article that's now been published by Nitish Kumar? Take us through the key takeaways as well.
1: Well, certainly it is. Ex-Chief Minister of Bihar and current
2: Nitish Kumar, who has praised Prime Minister Narendra Modi for completing 12 years. Significant in terms that how Prime Minister Narendra Modi had always... Hello?
0: All right, Aishwarya, thanks. We'll, of course, revert to you for a detailed update. We seem to be having some trouble there. We will decode Nitish Kumar's article on Prime Minister Modi in just a few moments from now. Well, Prime Minister Narendra Modi becomes the country's longest continuously serving elected premier, marking 12 years at the helm of the central government, surpassing the tenure records of both Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. This milestone comes as Narendra Modi completes 12 years in office and enters his third consecutive term as Prime Minister. The political focus shifts to Delhi, where Narendra Modi will chair a major conclave of NDA Chief Ministers and Deputy Chief Ministers at Bharat Mandapam. In fact, you must note the BJP is launching the Pragati Path Yatra, which is a nationwide outreach campaign that will see MPs, MLAs and party leaders visit key infrastructure and development projects across the country. And on a day packed with symbolism, Prime Minister Modi will also chair a cabinet meeting at the PMO Seva Teerth today. And several union cabinet ministers and BJP chief ministers will visit a temple to offer prayers on this occasion.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है।
4: देखिए 12 साल तो हो गए हैं तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है वो अपनी जगह है लेकिन आज देश की क्या हालत है उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है, मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए, क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफ़ी का इजहार किया है। 15 लाख रुपए काला धन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आमदनी दुगनी करना।
5: आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है।
6: भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा।
0: Meanwhile, in an exclusive interview with NDTV,

0: उसमें 5 ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा। लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा। तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद,
1: लेकिन योजना आयोग बना तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना?
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो 5 साल का होता है, 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था। तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा। तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा? हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा, कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने ओर से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बन सक बोल सकते विकसित राष्ट्र बने। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया क्योंकि लक्ष्य नहीं था।
1: तो आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे, ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना चाहिए।
0: लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा। हर काम मोदी जी का, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो, हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया वो विकसित भारत बनाने के लिए ही चलाया गया है। तो हमारा लक्ष्य है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी का तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो अगर टारगेट उस समय रखते हैं नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में, तो जब टारगेट रखता था आदमी उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तो विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक्चुअल जो विज़न है, सपना है, वो न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मैं उनके साथ शुरू से काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है कितना लगन और कितना अच्छा सोच के साथ मोदी जी ये लक्ष्य रखा है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
2: Well, every government wants to be judged by its intentions and history tends to judge governments by their outcomes. As Narendra Modi completes 12 years at the helm, the government is showcasing what it sees as transformational chapter in India's story. The numbers are substantial, as we briefly covered. 3 consecutive terms as Prime Minister, more than 4,400 days in office, and a political journey that stretches from Gandhinagar to New Delhi, and has made Narendra Modi one of the longest serving leaders in independent India's history. But as you know, for any serious democracy, anniversaries are not merely about celebration, they are also moments of assessment. So when future generations look back at this period, what will define it most? Take a look at this report.
3: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
4: Prime Minister Narendra Modi is creating history. On June 10, he becomes the longest serving democratically elected Prime Minister in India's history in terms of uninterrupted tenure.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
3: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers, you know.

0: office completing 4,399 consecutive days and surpassing the records of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi on development, welfare and citizen-centric governance, saying public trust remains the driving force behind every reform and policy decision. The achievement comes as Narendra Modi completes 12 years in office and continues into his third consecutive term as Prime Minister. The Union Cabinet has passed a resolution congratulating the Prime Minister on the milestone, with members applauding his leadership and giving him a standing ovation. Meanwhile, several Union Ministers and BJP Chief Ministers visited temples across the country, offering prayers to mark the occasion.
1: आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है।
2: आज देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4,359 दिन सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों को दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे।
3: हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है। 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
0: With that, it's a wrap on this edition of Breaking Ground. News and updates continue on NDTV. Stay tuned and thanks for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज वेयर द फ्यूचर शोज अप फर्स्ट। कॉन्वर्सेशंस विद द बिगेस्ट नेम्स इन टेक एंड एआई। Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360. Real talk, real reviews across the NDTV network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या

0: Prime Minister Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister in continuous office, completing 4,399 consecutive days, surpassing the record of the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, and of Indira Gandhi. Marking the milestone, the Prime Minister underlined his government's focus on development, welfare and citizen-centric governance, saying public trust remains the driving force behind every reform and policy decision. The achievement comes as Narendra Modi completes 12 years in office and continues into his third consecutive term as Prime Minister. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating the Prime Minister on the milestone, with members applauding his leadership and giving him a standing ovation. Meanwhile, several Union Ministers and BJP Chief Ministers visited temples across the country, offering prayers to mark the occasion.
1: आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

0: आज देश के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है। अब तक देश की सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री की भूमिका में रहकर सेवा करने वाले सौभाग्यवान व्यक्ति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। अब तक उन्होंने 4,369 दिन सर्वाधिक सेवा के अवसर देशवासियों को दिया। हम महाप्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं कि श्री मोदी जी को दीर्घायु दे और लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर दे।
1: हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये मामूली नहीं है। 4,399 डेज प्रधानमंत्री जी का पूरा हो जाएगा और इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
2: 12 साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में छलांग लगा रहा। आज हमें गर्व है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 12वें 14वें नंबर से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से हम 4थे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। रक्षा क्षेत्र में भारत हथियार खरीदने वाला नहीं, अब हथियार बेचने वाला राष्ट्र बना है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश की नीतियों में परिवर्तन किया, अब भारत किसी हमले के बाद सफ़ेद झंडा नहीं दिखाता, कायर कौम की तरह खड़ा नहीं रहता, अब भारत जवाबी हमला करता है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है।
4: देखिए 12 साल तो हो गए हैं तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज देश की क्या हालत है उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है, मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे उसमें से कितने वादे पूरे हुए, क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफ़ी का इजहार किया है। 15 लाख रुपए काला धन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आमदनी दुगनी करना।
5: आज के दिवस पे प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के सबसे लंबे प्रजातंत्र प्रणाली से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो अभूतपूर्व स्थिरता और उसी के साथ भारत के घरेलू उत्पादन की दर 7.7% तक पहुंचकर पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है।
6: For that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, West Asia on fire yet again. Details coming up after this break.

0: इसलिए है क्योंकि अब हमें शक्तिशाली देशों के बीच में विकसित राष्ट्र के नींव रास्ता बनाना है। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चाइना जैसे विकासशील राष्ट्रों के बीच से निकलते हुए भारत को विकसित करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आज चुनौती उनके सामने सिर्फ मैदानी नहीं है, आंतरिक चुनौती भी है, वैश्विक चुनौती भी है, और सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल की। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जो विकास के रास्ते पे सबसे बड़ी बाधा तैयार करता है। नरेंद्र मोदी जन विश्वास के चलते ही पिछले 12 साल में देश के अंदर एक नई तरह की धारा तैयार की है।
1: What makes this achievement significant, supporters argue, is the scale of contemporary electoral competition. From an India of 300 million people to an India of 1.4 billion. From a political system with a handful of national players to one featuring hundreds of parties and powerful regional formations. And amid that complexity, Narendra Modi has secured three consecutive mandates and maintained uninterrupted leadership for more than 12 years.
2: चुनौतियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक तौर पर कई चुनौतियां रही हैं। उन चुनौतियों का सामना प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू जी को नहीं करना पड़ा। हाँ, इतना जरूर है कि नेहरू जी ने भी कुछ युद्धों को झेला, इसी तरह से कई युद्ध नरेंद्र मोदी को भी झेलने पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश में तरक्की की लहर लाई, उस तरह की लहर नेहरू ने लाई।
1: फ्रॉम नेहरू टू इंदिरा गांधी, फ्रॉम राजीव गांधी टू द प्रेजेंट डे, मेनी लीडर्स हैव शेप्ड इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री। But on June 10, 2026, Narendra Modi sets a new benchmark in democratic leadership. This is not merely the story of one politician. It is also the story of how Indian politics has evolved. From an era where power often appeared inevitable, to an era where every mandate must be earned through relentless electoral battles. And in that story, Narendra Modi's name now enters the record books. Bureau Report, NDTV.
3: And well, as we speak, an NDA conclave to commemorate Prime Minister Narendra Modi's term as the longest serving Prime Minister is underway. But on that note, we're slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: झाप करते हुए इस राज्य

राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मानित किया, इतना मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है, और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है, और ये साधना भी एकाकी नहीं रही है, ये एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें आप सबने और अनेकों साथियों ने कर्तव्य भाव से अपना योगदान दिया है। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे, इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं। जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों,
साल

2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। ...2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं कल जो गरीब था, आज जो नियो मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है।

नारी शक्ति भारत का मध्यम वर्ग भारत के किसान सबकी आकांक्षाएं उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, आज पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के सिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे, आज भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर 1 देश है।
2014 में भारत अपनी जरूरत का

ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था, आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। ये सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथियों, कल के विस्तृत भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है।
आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं, हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानवीय के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी। लेकिन हमने मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा, और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। आज देश में सरल और फेसलेस टैक्स सिस्टम है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीते 12 वर्षों में मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए हर क्षेत्र में नए अवसर बने हैं। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा हो सके, सरकार इसमें भी मदद कर रही है। घर में इलाज के खर्च का बोझ कम हो, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना में बिना आय सीमा के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा लाभ देश के मध्यम वर्ग को हुआ है। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हुआ है, उसके सपनों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज देश का मिडिल क्लास अनिश्चितताओं से मुक्त हो रहा है। वो भरपूर आत्मविश्वास के साथ देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है। साथियों, हमारे लिए दल से हमेशा अगर बड़ा कुछ है तो हमारा देश है। दल से बड़ा देश है। और जब नेशन फर्स्ट, देश प्रथम की भावना से काम होता है तो कोई भी निर्णय कठिन नहीं होता। इसलिए ऐसे फैसले जिन्हें पहले असंभव समझा जाता था, जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अनिवार्य थे, हमने बहुत ही सधे हुए तरीके से उन फैसलों को भी लिया। पहले सरकारें आर्टिकल 370 की बात करने से डरती थी, हमने उसे खत्म करके पूरे देश में एक संविधान लागू किया। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते थे। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। साथियों, पहले मान लिया गया था कि नक्सलवाद, माओवाद अब कभी नहीं खत्म होने वाले हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हमने देश को नक्सलवाद, माओवाद के उस जहर से मुक्त करके दिखाया है। साथियों, महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार
राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, बीते 12 वर्षों में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब हमें अपनी दृष्टि आगे की ओर रखनी है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है और मैं बार बार कहता हूं यही समय है, सही समय है। साथ में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। अब जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है, बीते 12 वर्षों में हमने ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए अभूतपूर्व काम किया। मैंने लाल किले से समुद्र मंथन अभियान की घोषणा की थी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। बीते दिनों में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन को लेकर काफी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, यानी आने वाला समय अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है और हमें हर संभावना का पूरा फायदा उठाना है। साथियों, अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है। सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। अभी हमने दुनिया को दिखाया है कि भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच गया है। ये टेक्नोलॉजी हमें न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी और ये नाम बनना पक्का है। साथियों, आज बड़े एक्सपर्ट्स का भी अनुभव है कि जिन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम पर 80-90 के दशक में काम किया उन्हें उसका फायदा इस सदी में मिलना शुरू हुआ। भारत ने 10-12 वर्ष पहले जिस इकोसिस्टम पर काम करना शुरू किया उसका लाभ अब देश को मिलना शुरू हो गया। 2014-15-16 के कालखंड में जो बात नींव डाली गई उसके फल अब दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। साथियों, एनर्जी, मिनरल्स, चीप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस,
ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि ये भारत की आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हर प्रकार के सिक्योरिटी से जुड़े विषय है। और तभी भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इतना फोकस कर रहा है, तभी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर मिशन बोर्ड पर काम चल रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे और कंटेनर भी मेड इन इंडिया होंगे। शिप मेंटेनेंस और रिपेयर से लेकर स्क्रैपिंग तक की सर्विसेज भी भारत देगा। यही विजन हमारे एविएशन सेक्टर के लिए है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं दोस्त। साथियों, ये सदी टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है। आज विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। यही भारत की ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन का मजबूत पिलर बनाएगी। हमने यूपीआई के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि भारत कम से कम समय में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर सकता है। हमने दिखाया है कि हमारे युवाओं का सामर्थ्य क्या है। अब एआई, डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में दो वर्षों में भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया देखेगी। ये सेक्टर है टूरिज्म और स्पोर्ट्स। ये दोनों भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर बनेंगे। विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट के मामले में भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने के लिए अब पूरी तरह सज रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्शन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान

एकजुटता का संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जनविश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। हमें हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ना है। अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच नई प्रकार की तंदुरुस्त स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा हो। स्पर्धा इसकी हो कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा शहर इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे निकलता है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए, अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाए। आइए, राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाए। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है। आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं फिर से अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद ने हमें एक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है। ये जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हुए आइए, एक नए विश्वास के साथ हर संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े। देशवासियों के सपनों को हमारे संकल्प बनाए। हमारा पल पल देशवासियों के संकल्पों की साकार करने की यात्रा का अहम पड़ाव बनता चले। इसी इस भावना के साथ देशवासियों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए आओ, निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आरती और मसाला।
7: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
8: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
7: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV Network.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: दिस इज वेयर द फ्यूचर शोज अप फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस विद द बिगेस्ट नेम्स इन टेक एंड एआई putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360. Real talk, real reviews, across the NDTV network.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज
3: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट
4: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: देश का टायर जेके टायर
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्टियल मसाला।
5: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स द वे इट कनेक्ट्स।
6: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
5: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: between reforms and corruption. Take a look.
1: अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के सिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों,
0: ऑन दैट नोट वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग एनडीटीवी फॉर मोर न्यूज एंड अपडेट्स। कीप फॉलोइंग आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल।